0: क्योटो के किंकाकुजी मंदिर जाना चाहते हैं। मंदिर के नाम का तलफ्फुज है
1: किंकाकुजी, किंकाकुजी।
0: और जाना है
1: इकिमास, इकिमास।
0: मैं किंकाकुजी जाऊंगा, ये जापानी तो होगी, किंकाकुजी नी इकिमास। अब आप बताएं, मैं किंकाकुजी जाना चाहता हूं को क्या कहेंगे?
2: किंकाकुजी नी इकिताई देसु, किंकाकुजी नी इकिताई देसु।
0: अगर आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर गर्मियों का हल्का किमोनो युकाता खरीदना चाहते हैं तो ये किस तरह कहेंगे? युकाता का दुरुस्त तलफ्फुज है
1: युकाता, युकाता।
0: और खरीदने को कहते हैं
1: काइमास, काइमास।
0: तो सामीन कोशिश करें,
2: युकाता गा काइताई देस, युकाता गा काइताई देस।
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मियाँ ने ताम से उस वक्त कहा था जब ताम का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसे इसी तरह याद कर लें,
1: दाइजोबू।
0: दाइजोबू यानी क्या तुम ठीक हो, मुखातिब के बारे में फिक्रमंदी का इजहार है। शाइस्ता अंदाज में इसे कहेंगे दाइजोबू दिसका। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ठीक हैं और आप कहना चाहें मैं ठीक हूँ तो यूं कहेंगे
1: दाइजोबू दिस, दाइजोबू दिस।
3: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुने।
4: दाइजोबू,
5: दाइजोबू,
6: दाइजोबू।
3: सामीन अब आपकी से दोहराने की बारी है।
1: दाइजोबू।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम अपने आइंदा के इरादों का इजहार करती है।
7: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
8: हाय।
7: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देसु का?
8: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
7: 北海道、いいね。
8: あと、友達に会いたいです。
7: おや？
9: 大丈夫？顔が赤いよ。
7: はるさんの知恵袋。
3: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज के मकालमे का मकाम हारूसान हाउस की बैठक है। इस मुनासबत से जापानी घरों और तर्ज जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: कमरों की तादाद और उनकी तरतीब के लिहाज से तो हर घर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जापानी घरों में बुनियादी तौर पर दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी तर्ज के कमरे और मगरबी तर्ज के कमरे। मगरबी तर्ज के कमरों में लकड़ी का फर्श या कालीन बिछा फर्श होता है। इनमें आमतौर पर मेज कुर्सियां वगैरह इस्तेमाल होती हैं, जबकि जापानी तर्ज के कमरों में सरकंडों की बनी हुई मोटी चटाई ततामी का फर्श होता है और कमरे में नीची मेज होती है। अहले खाना मेज के गिर्द फर्श पर जाबुतोन कहलाने वाले कुशन रखकर बैठते हैं।
3: अनवर साहब, जापानी तर्ज के कमरों में रात को सोने के लिए ततामी पर बराह रास्त बिस्तर बिछाए जाते हैं जिन्हें फुतोन कहा जाता है, ऐसा ही है ना?
0: जी हाँ, लेकिन आजकल अपार्टमेंट्स आम होने और लोगों का तर्ज जिंदगी तब्दील होने की वजह से अब जापानी घरों में मगरबी तर्ज के कमरे आम हैं। तहम कई घरों में दोनों तर्ज के कमरे होते हैं। इनमें कम से कम एक ततामी वाला यानी जापानी तर्ज का कमरा होता है।
3: ततामी वाले कमरे में रहने का तसव्वुर भी काफी अच्छा मालूम होता है।
0: जी बिल्कुल। वैसे मगरबी या जापानी तर्ज से कतई नजर, जापान में घरों में दाखिल होते ही जूते उतार दिए जाते हैं। घरों के अंदर अक्सर स्लीपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जापानी तर्ज के कमरे में दाखिल होते वक्त वो भी उतार दिए जाते हैं। सरकंडों से बनी ततामी पर नंगे पैर चलना बहुत आरामदेह महसूस होता है। सरकंडों की खुशबू भी सुकून बख्श होती है।